असंख मूरखंद घोर हस असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहि जोर असंख गढ़ वढ हत्या कमाहि असंख पापी पाप कर जाहि असंख कूड़ियार कूड़े फिराहि असंख मलीश मल पाखाहि असंख।

मन सोर जोर न सुरती ज्ञान विचार जोर न जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच न कोए राती रुती थिति वार पवन पाणी अग्नि पाताल तस विच धरती थप थाप रखी धर्मसाल तस विच जी अजुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी हो।

नेत्र वर्ग हैं, असुर हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, आजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपंज हैं, अचूच हैं, अचंज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंत हैं, अबंध हैं, नृभूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अल्लाह हैं, अजाह हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसरीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं,

ज्ञान नाम्य समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाथ समस्ती विपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरम परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरम परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरम परम वृद्धे नमो शस्त्र पाणि नमो अस्त्र माणि नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भोक्ते नमो जोग जोगेश्वरम परम जोगते नमो नित नारायण क्रूर कर्मे नमो प्रेत प्रे देवे सुतर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो सा साह नमो भूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नान नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रंग सदा सच्चदानंद सद्भं प्रणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता दूर दर्दंग अगंगोग हरता परम परम परमेश्वरंग प्रोषपालंग सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालंग अशेदी अभेदी अनामंग अकामंग समस्त उपराजी समस्तस्तामंग तेरा जोर चाचरी छंद

सर्वसाते अगाध स्वरूप निर्बाद में भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते रे साकं सरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है आ जाए है आ जाहे भगवती शंतु प्रसाद कि जा हर जूर है कि हाजर हजूर है हम इसलो सलाम है समस्तुल कलाम है कि साहिब दिमाग है कि हुसनल चिराग है कि कामल करीम है कि राज करीम है कि रोजी देहंद है कि राज करहिंद है करीमुल कमाल है कि हुसनुल जमाल है कि गनीमुल खिराज है गरीबुल निवास है हरीफुल सिकन है हरासुल फिकन है कलंकंग प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाय करीम है समस्तुल जुबा है कि साहिब किरा है कि नरकम प्रणास है बहिस्तुल निवास है कि सरबुल गवन है हमेशुल रवन है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है।

पाए कर्म सुन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव की ओ मेदराज ब्रह्मा जू थी ओ जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा।

दिने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो सत्रन को पल मोहब्बत कियो घट घट के अंतर की जान भले बुरे की पीर पछाण चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्ख करा करता रा प्रजा तरतब दे अपारा जब अकर्ख कर तो हो कब हूं तुम मैं मिलता दे तर सब हूं जेते बदन फ्रेश सब तहरा आप अपनी बूझ उचार तुम सभी तेरा निराल जान भेद आलम

आप अपनी बुद्ध है जेती वर्ण भिन्न भिन्न तुह देती तुमरा लखाना जाए पसारा के बिन सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कई भूपा अंडज देर जसे तिजकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हुए बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्ट दिखाए अचंभव या जुगा स्वरूप सुयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखे उबार सिखे संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश क्रूरन काता जियस तो तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे पुरख जमन पग परे ते हारे तिनके।

कृपा दृष्टन जाहि ने हरि होता किताब तन कमय हरि हो रित सिद्ध कर्मो सब होई दुष्याश्व सकै ना कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम ते हारू कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा।

आनिया त्यों मथे त्रम राय नाम ते अहिंसा जना जन्म पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवह कीतो पवन पुनीत।

मन में धरै गुमान। नानक निफल जात तिहा ज्यो कुंचरी सनान। सिर कंपियो।

वाला। राग एक संग पंच बरंगन संग अला पह आठौ नंदन प्रथम राग भैरो वै कर ही पंच राग नी संग उचर ही प्रथम भैरवी बिलावली पुनिया की गाव है बंगली पुन हसले खी की पही बारी ए भैरव की पांचौ नारी पंचम हरख दिसाख सुनाव है बंगाल मद माधव गाव है ललत बिलावल गाव ही अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र भैरव के गाव है गायन पात्र द्वितिया मार कौशक आलाप है संग रागनी पांचौथा पह गौण करी अरदेव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनाश्री ए पांचौ गाई माल राग कौशक संगलाई मारू मस्त अंग मेवारा प्रबल चंड कौशक उबारा खौ खटे पौरानंद गाये अष्ट माल कौशक संगलाय पुन आयो हिंडोल पंचनार संगे अष्ट सुत उठह तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी लै पार जा संग लाई पांचो वार जा सुरमानंद पास करे आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरसबान औवाहे बिनोदा गाव है सरस बसंत कमोदा अष्ट पुत्र मैं कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशली पट मंजरी टोडी कही अलाप का मोदी औ गुजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतले और रामा कमल कुसुम चंपक के नामा गाव राव कन राग कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वै गाव है पांचो संग बरंगन लाव है बैरारी करनाटी तरी गबरी गाव है आसावरी ते पाछे सिंध भी अलापी श्री राग सिव पांचौ थापी सालू सारग सागराय और गुण गंभीर अष्ट पुत्र श्री राग के गुण कुंभ हमीर खष्टम मेघ राग वै गाव है पांचौ संग बरंगन लाव है सोठ गुण मलारी तुनी पुन गाव है आसा गुण गुनी

दंडौत वंदन अनेक बार सर्व कला समर्थ डोलना ते रखो प्रभु नानक जेकर हाथ डोलना

इतना समा मेरा व्यर्थ चला गया है। गुरु तेग बहादुर महाराज जी नौवें सतगुरु जी ने जिथों श्लोकां दी आरंभता कीती है, गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म अकारथ कीन, कीन शब्द जिहड़ा ना उहदा पावे कर दिता है, आप कीता है, किसी ने नहीं कीता। कीन दा की भाव है? अकारथ कर देना ते आप करना, जान बुझ के कर देना, अपना नुकसान आप करना। एक तो हुंदा ना कुदरती मार पै जानी, नेचर दे हिसाब नाल किसी का कोई नुकसान हो जाना, घाटा पै जाना। एक अपने हथी अपना नुकसान आपे ही कर लेना, वो गल गुरु तेग बहादुर कहिंदे ने। गोबिंद दे गुणा नू ना गाउण करके जन्म नू अकारथ इन्हें आपे ही कीता है, किसी ने थोड़ी कीता है। किसी व्यापारी बंदे नू व्यापार विच घाटा पै जाए तो वह कह सकता है कि समय दे हालातों के मुताबिक मैनू व्यापार विच घाटा पै गया। किसी दुकानदार की हट्टी विच घाटा पै जाए वह कह सकता है कि हालात ही कुछ ऐसे बन गए, गाहक नहीं आए, मेरा नुकसान हो गया किसी दूजे दे करके। किसान की किसानी मुक जाए, खेती ना होवे तो वह भी कह सकता है मौसम खराब हो गया सी, गड़ेमारी हो गई सी, मेरी किसानी बर्बाद हो गई, खेती बर्बाद हो गई। परमार्थ दे मार्ग ते दोष किसी दूजे नूं नहीं दिता जा सकता, बाणी आखदी है। मनुखा जीवन दे अंदर जे तेरी जिंदगी रूपी हट्टी घाटे विच चल रही है, जीवन दा व्यापार नुकसान वाले पासे जा रहा है, इहदा कारण तू आप है, कोई दूजा इहदा कारण नहीं है, ये तू अपने आप ही कीता है। गुरु तेग बहादुर कहिंदे ने गोबिंद दे गुणा नू नहीं गाया इस करके जन्म अकारथ कीन, तू अपने जन्म नू इस मनुखा जीवन नू अकारथ आप ही कीता है। साडी ठेठ पंजाबी बोली दा एक बोल है, अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ी मार लैनी। भाव की है? अपना नुकसान आप ही कर लेना। यह हवाला भगत बाणी विच भी आउंदा है, दीन गवाया दुनी स्यों, दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया काफल अपने हाथ। अपने पैरां ते कुहाड़ी मार के अपने पैर आपे ही वढ़ लैने, ये कोई दोष दूजे नूं नहीं दिता जा सकता। दीन गवाया है, दीन धर्म नूं कहिंदे ने, परमार्थ दे मार्ग नूं दीन आखिया जांदा है। उंज दीन गरीब नूं वी कहिंदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी बाणी दे अंदर ऐसे बड़े शब्द ने जिहड़े वेखण नूं इक्को ही लगदे ने, अर्थ वक्खरे वक्खरे हुंदे ने। दीन गरीब नूं वी कहिंदे ने, दीन धर्म नूं वी कहिंदे ने। इह सानूं देखणा पैगा उत्थे की प्रकरण चल रिहा है, किस लहजे विच किस रूप विच इह शब्द उचारिया जा रहा है। कबीर साहब कहिंदे ने, दीन गवाया है, धर्म गवा लिया है, कादी करके दुनिया दे करके, पर दुनी ना चाली, दुनिया नाल नहीं चली, जिन्ना करके ये परमार्थ दे मार्ग तो पिछे हटिया सी, जिन्ना दी खातर ये गुरु तो दूर होया सी, बेमुख होया सी, बिल्कुल वो ये नाल नहीं चले, दुनी नाल नहीं चली, इते वो हालत बन गई, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। किसी गाफल ने अपने हथी आप ही आपदे पैर वढ़ लए, ते पैर जिंदगी का बड़ा जरूरी अंग है, ये तो बिना तो बंदा लंगड़ा हो जाएगा ना, लूला हो जाएगा, तुर नहीं सकेगा। परमार्थ के मार्ग से चलन वास्ते भी पैरों का वार वार जिक्र आता है।

जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे ते आए सदा मन अंदर। जे प्रसाद करे संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना।

काटी। तैसा मान तैसा विमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताए साई जुगत नानक यो पुरख कहिए जीवन मुक्त। पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ आपे करन करावन जोग प्रपावे सोई फन होग पसरे आप वे अंत तरंग।

का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जानै संग प्रभु का, सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालन हारा। सेवक की राखै निरंकारा, सो सेवक जस दया प्रवतारै। नानक सो सेवक सास सास सुमारै।

लाख है। प्रभु के सेवकों को ना पहुँचाए, प्रभु के सेव पूछते उचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दा दस प्रगटाया। निकी कीरी में कल राख है, पसम करै लस्कर कोट लाख है, जिसका सास न काट आप ताकव राखत दे कर हाथ। मानस जतन करत बात, तिसके करत बिरथे जात, मारे ना राख है अवर न कोई, सर्ब जिया का राखा सोहे का हे सोच कर है रे प्राणी, जप नानक प्राव अलख बिड़ाणी। बारंबार बार प्रभु जपिया, पी अमृत मन तंत्र हपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस केशव

सिमर सिमर सदा सुख पाओ, भव बिन साहिब पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म प्रगास।

हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए। संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुत मीत कुटांबर बनिता, इनते कहो तुम कवन सनाथा।

प्रभक संत दीन दयाल भक्त वत्सल सदा कृपाला नाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल पुरख कारण करता भगत जना के प्राण आधार जो जो जो पैस होए पुनीत भगत भाई लावे मन हित हम निर्गुण यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोक पाए एक निम खर के गुण गाय अनकराज भोग बड़े आई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जापती हर हर नीत भली सो करनी सो बा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुर मनसा संग प्रभ देव निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार।

जब इसका वर्ण चेन न जापत तब हर्क सो कह कह व्याप जब अपने आप अपार ब्रह्म तब मोह कह सोत परम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक कह हरगमा पार तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सुपाय

पूरन पूर रहे दयाल सब उपरोवत कृपाले अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहे हो ब्याप प्रतपाले जीन बोपात जो जो रचो सो तसहत हाथ जिस पावे तस लय मिलाए भक्त करे हर के गुण गाए मन अंतर।